0: Welcome back. The row over viral comedy clips is widening, with multiple individuals now facing scrutiny from authorities as the controversy gathers momentum. Comedian Praneeth More, who has been summoned by the National Commission for Women, has issued a public apology, stating that he accepts full responsibility for the remarks that sparked backlash. The fallout has also reached KEM Hospital, where student Sejal Pawar has been questioned by the administration. Hospital authorities are now examining possible action after she submitted a written apology to the administration.
1: आप सबने मेरा क्राउडवर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसे लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउडवर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया. और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बनकर दिखाऊंगा.
0: And facing mounting backlash, Sejal Pawar has issued an unconditional apology, but the fallout continues. Let's listen in to what she said during her clarification.
2: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक.
0: The All India Medical Students Association president has condemned Sejal Pawar's comments, saying she has certainly studied the medical oath but did not follow it.
3: उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है डेड बॉडी पे, देवतुल्य डेड बॉडी पे टिप्पणी की है, बहुत ही निंदनीय है. हम इसका खंडन करते हैं और निंदा करते हैं और सेजल पवार और जो सेजल पवार जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
0: Well, wrapping up this edition with this special report, the announcement of India's under 19 squad for the upcoming Sri Lanka tour on Thursday quickly grabbed headlines across mainstream and social media. The biggest talking point was the inclusion of Anvay Dravid, the youngest son of former India captain and head coach Rahul Dravid. But Dravids are not the only cricketing family making news. Several children of former Indian stars are now trying to carve out their own identities on the cricket field. Leaving you with this report.
4: Before Anvay Dravid entered the spotlight, his elder brother Sumit Dravid had already begun making his mark in cricket. Anvay is a wicketkeeper batter while Sumit is known as a right-handed batter who can also contribute with medium-pace bowling. Both sons of Rahul Dravid are now following in their father's footsteps. Master blaster Sachin Tendulkar's 26-year-old son Arjun Tendulkar continues to pursue his cricketing journey with Goa in domestic cricket and has also featured in the IPL. A left-arm pacer capable of bowling at speeds above 135 km per hour, Arjun has picked up 52 wickets in 24 first-class matches. Like his father Virendra Sehwag, Aryaveer Sehwag is known for his aggressive batting style. He made headlines 2 years ago when he smashed 297 runs off just 309 balls for Delhi Under-19 against Meghalaya in the Cooch Behar Trophy, announcing himself as one of the promising young batters to watch. Former India cricketer Sanjay Bangar's 23-year-old daughter Anaya Bangar, formerly known as Aryan Bangar, has continued her association with cricket after undergoing gender transition. A left-handed batter and spin bowler, Anaya remains active in the sport, although Indian cricket currently does not have a widely recognized pathway or policy for transgender cricketers in BCCI-organized competitions.

0: और व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
2: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
3: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
4: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
5: It's also important that how they are reshaping the industries.
6: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
1: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आग प्योर मसाला।
10: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
11: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
12: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
13: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
14: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
15: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: following Prime Minister Narendra Modi is now all over the internet. This, of course, signals a huge row which is now erupting between the Congress and the CPIM.
1: We have our fights, but if you are asking me to go and hug the ex-Chief Minister of Kerala, I cannot and I will not, because I have an ongoing political fight with him.
2: കെട്ടിപ്പിടിക്കല് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അധികം ഉണ്ടാകാറില്ലല്ലോ. അപൂർവമായിട്ട് ചില ആളുകളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ഒന്നുകിൽ പരസ്പരം വണങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊടുക്കും. കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. പക്ഷേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഇന്ന് കണ്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധി മോദിയെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കാണുകയുണ്ടായി. മോദിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആക്ഷേപമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണമാണ്. അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സംസാര രീതി തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി എങ്ങനെ ഇന്ത്യ വേദിയെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
3: It would have been desirable that Congress gives out the remaining deliberations. In fact, Rahul Gandhi's concluding remarks, which is hardly 5% of the total deliberations, have been given out. It would be the fitness of things that other deliberations also is given out, so that people understand what actually transpired there. Further, the comment about Pinarayi Vijayan that he cannot embrace Pinarayi Vijayan. The left party has never asked him to embrace Pinarayi Vijayan as he embraced Narendra Modi. It's not a question of embracing. It's a question of keeping the integrity of the India bloc politics.
4: Please, we fold our hands. We don't want any hugs from anybody. Communists don't need hugs. But we need clear politics. What is the politics? The politics is BJP RSS is trying to break the opposition. So please, Rahul Gandhiji, keep your hugs to yourself. But as the LOP, please respect leaders of the opposition like Pinarayi Vijayan, who have spent the better part of their life fighting for the working class against BJP RSS.
0: Well, my colleague Tejshree joins us on the broadcast to share more details on this. You know, Tejshree, a huge hug war now, in fact, erupting between the Congress and the CPIM. But the larger point over here is that this exposes the cracks within the India alliance. Walk us through the details. What exactly is happening within the alliance?
5: Well, Reet, that is the big question, because you see, just a few days back, we covered this entire India bloc meeting in which, in fact, there were many members of the India bloc who raised this issue that the opposition parties within the India
0: Now, it seems as though we're having trouble connecting with my colleague Tejshree there, but of course, she's also raised a very important question, which is with regards to the future of the India bloc. Remember that with such controversies erupting between parties that, in fact, are a part of the same alliance, now the CPIM in the latest has even questioned that what happens to the fight against the BJP and the RSS. So, of course, big questions now remaining about the future of the India alliance and what happens when such big cracks emerge within the parties that are a part of the alliance. Let's move on to more updates coming in at this hour. Well, let's shift focus to Tamil Nadu. Now, women's safety debate has reignited in Tamil Nadu. The DMK chief, M.K. Stalin, has slammed Tamil Nadu Chief Minister Vijay for the TVK worker being accused for harassing a woman. Stalin even questioned Vijay's poll promises on women's safety. The DMK claimed that women are unsafe under Vijay Sarkar. The political heat on the Chief Minister Vijay comes after Tamil Nadu cops have registered a case against a TVK functionary for harassing a woman.
6: திருவைகுண்டத்தில் ஆளுங்கட்சி சார்ந்த பெண்ணுக்கு அந்த கட்சியில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துருக்குறாங்க. இது பற்றி ரெண்டு அமைச்சர்கிட்ட முறையிட்டும் நீதி கிடைக்கல. நேற்று கூட ஆலந்தூர்லேயும் சேலத்துலேயும் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த நபர்களை பாலியல் குற்றங்களை ஈடுபட்டதாக செய்திகள் வந்துச்சு. தேர்தலுக்கு முன்னே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் பேசின எல்லா கூட்டத்திலையும் பெண்கள் பாதுகாப்பு பற்றி தான் தொடர்ந்து பேசினார். இன்னொன்று சொன்னார், எங்கே நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் அது நம்ம பசங்க தான் செஞ்சதாக இருக்கணும்னு சொன்னார். ஆனால் இன்றைய நிலை என்ன? தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான பெரும்பாலான குற்ற செயல்களில் தாவயக்கா நிர்வாகிகள் தான் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு. பிரச்சாரத்தில் பேசும்போது தாவேக்கா ஆட்சி பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ தாவேக்கா கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பு வேணும்னு மக்கள் கேட்குற நிலைக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து
7: இந்த நைட்ஸ் விமன் ஆர் அஜிடேட்டிங் இன் தி ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் பவர். தே டிட் நாட் டேக் எனி ஆக்ஷன் டு ரெஸ்டோர் பவர் ஆர் டேக் டு செட் ரைட் திங்ஸ். But they want to accuse DMK for whatever is happening. This is DMK doing, this is DMTK. That is not why. Then why you leave the government? We will take care. But they did not take any action to restore power or see ensure that power supply is regular. But they want to accuse DMK. That is what they are doing.
0: Well, moving on to more updates coming in at this hour, an Indian Air Force AN-32 transport aircraft crashed and caught fire at the Air Force station in Assam's Jorhat yesterday morning. Five IAF personnel, including two Agnivirs, were martyred in the crash. According to initial reports, the AN-32 aircraft went down within the Air Force station premises while landing, triggering a fire after the crash. The Indian Air Force has confirmed that the accident occurred during a training sortie and constituted an inquiry committee to ascertain the cause of the accident. Emergency response teams were immediately deployed to the site to control the blaze and even assess the situation. Union Defence Minister Rajnath Singh has expressed grief at the loss of India's air warriors. Moving on to fresh updates coming in, well, the fallout from the viral comedy controversy continues to widen, with apologies, disciplinary action and even public scrutiny mounting on all public fronts. Comedian Pranit More has now issued a second apology, admitting that he got carried away, calling the episode a lapse in judgment and saying that he takes full responsibility for what transpired. Meanwhile, the KIM Hospital has initiated action against MBBS student Sejal Pawar, sending her on a 15-day leave, barring her entry to the college and even ordering a preliminary inquiry into the matter. The third key figure in the controversy, Himanshu Jhangra, has also issued a fresh statement, claiming that he used wrong words and even asserted that the viral story he narrated was not true, but had been improvised during the show.
8: You all have seen my crowd work video, which I'm getting a lot of hate. And I think that this hate I deserve bhi karta hun. Because us ladke se jab main crowd work kar raha tha, usne kafi derogatory cheeze boli. बट सब लोग उस पर हंस रहे थे तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था बट जो मैं नहीं कर पाया मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ. लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा.
9: अब मैंने जो वहाँ पे स्टोरी बताई, अब सर उसमें जो जिस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था ऐसे, मतलब कि हमारी अच्छी काफ़ी बात हुई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी हमने अच्छा काफ़ी टाइम स्पेंड किया. बट सर जो मैंने वहाँ पर बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था, मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर. बिकॉज क्योंकि सर मेरे से पहले जो लोग बता रहे थे वीडियो में, उन्होंने भी काफ़ी ऐसी टाइप की स्टोरीज बताई हैं. वो अब पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि लोगों ने मेरे को ही ट्रिगर किया मोस्टली. मैं मानता भी हूँ क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पर. मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा. मेरे को बहुत पछतावा है कि जो भी मैंने बोला वहाँ पर बहुत गलत बोला, और आगे से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे.
10: सेजल पवार, इन्होंने चार बार ये गलती की है हॉस्पिटल को, कुछ गलत गलत वर्ड चिंदीगढ़ टॉक्सिन बिक्सिन ऐसे वर्ड उन्होंने यूज किए. लेकिन मुझे लगता है अभी जो हो रहा है उसके ऊपर बहुत ट्रोलिंग हो रहा है. हमें भी गुस्सा है कि ये बात उन्होंने जो डेड बॉडी के बारे में बात की वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि आप डॉक्टर बन के बाहर आने वाली है और डॉक्टर के मन में कुछ डेड बॉडी का ये मेल हो या फीमेल हो,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट
2: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
3: Many of the

0: to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Yes. Dog Seva, Jan Seva.
2: केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल 12 वर्ष और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का अटूट सेवा संकल्प, दोनों के साझे प्रयासों से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में आ चुका है एक ऐतिहासिक बदलाव। दिल्ली में पूरी तरह लागू हो चुकी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब पात्र परिवारों को मिल रहा है हर वर्ष 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर केंद्र सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप दिल्ली सरकार की ओर से। यही नहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान व्यय वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें भी 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है। दिल्ली के सैकड़ों सरकारी और निजी अस्पतालों में अब इलाज हो रहा है आसान, कैशलेस और।
3: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
4: रियली
3: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
5: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
6: Higher end, check the audio.
7: Hello and welcome. My name is Reet Kaur Sahani and you're watching NDTV. We've got an action-packed show lined up just for you, but let's first take you through the headlines of the hour. TMC turmoil deepens further. Chief Minister Shivendu Kari to meet the rebel member parliaments today. Union Mantri slams the rebels and says that the doors are shut for the TMC rebel member parliaments. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi's won't hug Vijay and remarks Stokes Rao. Left-hand side of Rahul Gandhi says can't bash opposition leader and talk

0: இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் பேசின எல்லா கூட்டத்திலையும் பெண்கள் பாதுகாப்பு பற்றி தான் தொடர்ந்து பேசினார். இன்னொன்று சொன்னார், எங்க நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் அது நம்ம பசங்க தான் செஞ்சதா இருக்கணும்னு சொன்னார். ஆனா இன்றைய நல்ல என்ன, தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான பெரும்பாலான குற்ற செயல்களில் தாவயக்கார நிர்வாகிகள்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு. பிரச்சாரத்தை பேசும்போது தாவேக்காட்சி பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆனா இப்போ தாவேக்கா கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பு வேணும்னு மக்கள் கேட்கிற நிலைக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து
1: இந்த நைட்ஸ் விமன் ஆர் அஜிடேட்டிங் இன் தி ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் பவர். தே டிட் நாட் டேக் எனி ஆக்ஷன் டு ரெஸ்டோர் பவர் ஆர் டேக் டு செட் ரைட் திங்ஸ், பட் தே வாண்ட் டு அக்யூஸ் டிஎம்கே ஃபார் வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங். திஸ் இஸ் டிஎம்கே டூயிங், திஸ் இஸ் டிஎம்டிகே, தட் இஸ் நாட் வை தென் வை யூ லீவ் தி கவர்மெண்ட், வி வில் டேக் கேர். But they did not take any action to restore power or see ensure that power supply is regular, but they want to accuse DMK. That is what they are doing.
2: Well, let's now take you to Bihar. Tensions flared at the Pataliputra railway station in Patna, Bihar, after hundreds of students traveling for a major state recruitment exam protested over severe train delays. Candidates alleged that delayed services and heavy overcrowding could cause them to miss their exam centres. As frustration mounted, agitated students even blocked railway tracks, vandalised an exam special train and pelted stones at police personnel, disrupting rail traffic for several hours. Many students were unable to board the overcrowded trains, further fueling anger at the station. Now the situation escalated, prompting a heavy police deployment. Police launched a lathi charge and even fired tear gas shells to disperse the crowd and clear the tracks, while rail services remained disrupted.
3: कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आधी की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन्स भी व्यवस्था की गई थी, दो स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं, तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराया गया।
4: यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, RPF, GRP और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है, और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है, सारी गाड़ियां खुल
5: गई। आपको चोट भी लगी होगी?
4: वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पत्थर होगा तो लगी
6: जवानों को पत्थर से चोट लगी।
4: आप? हाँ, कुछ हम लोगों को लगी है चोटें जो पत्थरों से, कोई गंभीर समस्या नहीं। आगे प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है।
2: Let's now turn our attention to more updates coming in at this hour. While the fallout from the viral comedy controversy continues to widen, with apologies, disciplinary reaction and public scrutiny mounting on multiple fronts. Comedian Pranit More has now issued a second apology, admitting that he got carried away, calling the episode a lapse in judgment and saying that he takes full responsibility for what transpired. Meanwhile, KIM Hospital has initiated action against MBBS student Sejal Pawar, sending her on 15 days of leave, barring her entry to the college and even ordering a preliminary inquiry into the matter. The third key figure in the controversy, Himanshu Jhangra, has also issued a fresh statement in the case, claiming that he used the wrong words and even asserting that the viral story he narrated was not true but in fact improvised during the course of the show.
7: Raudo ka video dekha rahega jiske liye mujhe kafi hate mil rahi hai aur mujhe aisa lagta hai ye hate main deserve bhi karta hu kyunki us ladke se jab main crowd work kar raha tha usne kafi derogatory cheeze boli. बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया, और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी. मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पर ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई. तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि

0: आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा।
1: अब मैंने जो वहाँ पे स्टोरी बताई, अब सर उसमें जो जिस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था ऐसे, मतलब कि हमारी अच्छी काफ़ी बात हुई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी हमने अच्छा काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बट सर जो मैंने वहाँ पे बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था, मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर। क्योंकि सर मेरे से पहले जो लोग बता रहे थे वीडियो में, उन्होंने भी काफ़ी ऐसी टाइप की स्टोरीज बताई हैं। वो अब पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि लोगों ने मेरे को ही ट्रिगर किया मोस्टली, मैं मानता भी हूँ, क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे। मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा, मेरे को बहुत पछतावा है कि जो भी मैंने बोला वहाँ पे बहुत गलत बोला, और आगे से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे।
2: With us, we're going to take a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: हुआ उसके अगेंस्ट में तो ये ईडी होगा ही।
1: And switching tracks now, the Congress has launched a sharp attack on both the United States and the center over the deaths of three Indian sailors in that strike that took place by the United States near the Strait of Hormuz. It's Congress MP Manish Tiwari who's accused the United States of showing no regret, no remorse whatsoever, no sympathy, no empathy. And he also has called on the External Affairs Minister, S. Jaishankar, to disclose details of his conversation that he's had with U.S. Secretary of State Marco Rubio. The political row really comes about even as India has lodged a strong protest with the United States over that very strike. However, Washington has defended its actions, maintaining that all commercial vessels must comply with the instructions issued by the United States. The deceased sailors were identified as Aditya Sharma, Shivanand Chaurasia, and Patnala Suresh, who were among the 24 Indian crew members aboard the vessel when it was struck by a U.S. precision missile, and this took place just days back on the 9th of June. Let's listen in to what Congress leader Pawan Khera had to say.
2: Mr. Jaishankar's post says that the words he used was not justified. It's a very mild way of rebuking somebody who's killed your own people. Whereas Rubio's statement is very harsh on us. It's like ulta chor kotwal ko daante. You've killed our people. You have to apologize, unconditional apology. There are international laws governing. You can't attack a commercial vessel of a third country in a conflict. Why was Mr. Jaishankar so apologetic? We've lost lives. We should have demanded apology, unconditional apology. But look at the international humiliation.
1: Switching tracks now to a shocking case of alleged medical negligence that's emerged from AIIMS Bhopal. A 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer reportedly died after he was injected. There was, whatever was injected into his veins instead of what really needed to be injected, that prescribed medication was not injected. And the incident took place in December of last year. But the police have registered an FIR against two nursing officials following an internal inquiry of the hospital. The probe found that a highly toxic chemical used to preserve tissue samples had been filled into the syringe meant for lab use and was allegedly left near a patient's bed in violation of protocol. Now, the police have booked those two nursing staff members for causing death by negligence.
3: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन वो उठा के वो उठा लिया और मैंने मैडम से बोला मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है इसमें एनेस्थिया भी है तो मैडम बोले लाई नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है ये फ्लैशर है मैंने कही मैडम ये फ्लैशर नहीं है ये बोन मेरो का सामान रखा है इसको मत छेड़ो आप दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे नहीं ये मुझे पता है मैंने कही सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
4: भोपाल एम्स एक बार फिर सुर्खियों में है। एक पिता अपने 3 साल के बच्चे को यहाँ पर इलाज के लिए लेकर आया लेकिन बजाय इलाज मिलने के उस बच्चे को ऐसा इंजेक्शन दे दिया गया कि कुछ ही देर में बच्चे की मौत हो गई। दरअसल मामला सागर के बीना से जुड़ा हुआ है। ये वही एम्स है जहाँ पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोज हुआ उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहाँ पहुँचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहाँ पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। ये वो फॉर्मेलिन है जो शवों को संरक्षित करने के लिए लगाया जाता है या फिर बायप्सी के लिए उस शरीर के अंग के टुकड़े में लगाया जाता है। फॉर्मेलिन लगाने के बाद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स

0: की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी हमारी स्थिति नियंत्रण में है। अतिरिक्त पुलिस बल भी हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। टीम बना दी गई है। इनके जहाँ जहाँ इनके रिश्तेदार हैं, इनके जो जो स्थान पुलिस को पता चलते जा रहे हैं, उन्हीं पे टीम जा रही है और गिरफ्तारी की जा रही है।
1: सर, क्या आरोपी पक्ष मुस्लिम है?
0: आरोपी पक्ष हाँ मुस्लिम है।
2: अभी बहुत ही दुखद घटना हुई और यहाँ पे हमारे भगवत जी हैं, उनका बहुत हमारे वरिष्ठ और बुजुर्गवार कार्यकर्ता, उनके बेटे को, और बहुत वो भी हमारे बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारी भी था, और यहाँ पे कुछ ये गुंडा एलिमेंट जो नशे का कारोबार, चोरी का कारोबार, सब तरीके के धंधे करते हैं, कोई ये क्या है एहसान वगैरह बताते हैं कौन से परिवारों के ये, और इन्होंने लेकर के और पूरा परिवार उनके घर में घुस करके टूट पड़े। आप देख रहे हैं उनके घर के सामने ये यहाँ पर किस तरीके से खून बिखरा पड़ा है, और हथौड़ों से लेकर के उनके ऊपर वार किया और एक की हत्या कर दी, और दो तीन लोग और गंभीर रूप से घायल है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय है।
3: Right, let's just get in my colleague who is joining us is Kishore Rawat from that incident spot in Dehradun. Well, this man has been killed, Kishore. His family also came under attack. His family members are undergoing treatment. Take us through the details of what really happened, because the crux of all of this is a water dispute that led to the altercation. What are the details?
4: जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है अमन अली, उसके घर पर प्रशासन का एक्शन हुआ है, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरे घर को यहाँ पर, घर के जो अलग अलग हिस्से का, उसको गिराया गया है, और फिलहाल अभी यहाँ पे भारी संख्या में लोग हैं, लोगों में काफी गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पानी के खेत में पानी के लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। करीबन 20 से 25 युवक आए और जो मृत थे उस पर हमला किया उसके घर में आके, और तस्वीरों में सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वो बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, और उसको लेकर पूरे क्षेत्र में काफी गुस्सा है, तनावपूर्ण है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद है, और फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई है, पुलिस बड़ी तादाद में है, और लोगों की अगर बात करें तो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों का एक ही बात कहनी है कि इस तरह की जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तनाव को देख के, लोगों के गुस्से के रिएक्शन को देखकर यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासन एक्शन में आया है। ये बताया जा रहा है कि 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, और अभी तलाश और जारी है, और कौन कौन जो लोग शामिल थे इसमें उनकी सबकी तलाश जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो
5: लोग हैं वो भारी संख्या में मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जे एक बुलडोजर है, लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि इस जो जहाँ पर जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनके जो यहाँ पर अवैध रूप से बताया जा रहा है कि उन्होंने घर बनाए या फिर अन्य चीज़ें को जो बनाया, उनको अब यहाँ पर पकड़ा कार्रवाई की जा रही है। लगातार यही बात सामने आ रही है कि अब जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय विधायक है बीजेपी के, मुन्ना सिंह चौहान, वो खुद यहाँ पर देर रात से है, वो लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश में है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसी हो ताकि दूसरा इस तरह की हरकत ना करे। सिर्फ खेत में पानी को लगाने को लेकर अगर विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक युवक की जान चली जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मंशा होगी, किस तरीके से हथियारों के साथ वहां पहुंचे, लाठी डंडे, यहां तक कि बड़े बड़े हथौड़ों से हमला किया गया। तो अब ऐसे में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर, लेकिन पूरे क्षेत्र में माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है और लगातार कार्रवाई चल रही है, एक्शन लिया जा रहा है। जी
3: Right, thank you so much, Kishore, for getting us the very latest. Moving on now, let's get you more breaking news coming in. And this is coming out of West Bengal with this is Abhishek Banerjee, the nephew of Mamata Banerjee, who has reached the CID headquarters in the signature forgery case with a heat that is, in fact, on the leader of the TMC. He appears before the CID and is under legal who did you remember that he was questioned for over 6 hours by the CID on Thursday the 12th. And here we have, of course, he was called again because he hadn't been cooperating. We have Hrithik, my colleague, joining us. Hrithik, last time around the CID questioned him time and again. He do remember that he was summoned 3 times over. He had skipped those summons. Finally, he appeared before the CID. And this took place, just 3 days back. Now, of course, he has been called yet again. And the fact is that he wasn't really cooperating. From what we heard from our sources, is all he kept saying was, I do not know. That is what was said from his side during that questioning that spanned over 6 hours.
1: Well, that's right. That lot of questions were asked in regard to the first signature, which were done for the appointment of Shobhendu Chattopadhyay as the leader of the opposition for the assembly. And during the first grilling, Abhishek Banerjee, the Trinamool Congress All India General Secretary, refuses to answer many of the questions. So far, the sources inside CID are concerned, we are being told. And we are also learning that today is the second day of Abhishek Banerjee's questioning. And he has just appeared before the probe team at the headquarters here in Bhabani Bhavan. And what we know, there would be multiple questions lined up for Abhishek Banerjee. One, that those signatures which were written or signed in capital letters, what was the reason behind that? And several, rebel TMC legislator have already registered that or raised this concern that they did not do the signature during the resolution meeting which had been taking place at Mamata right. Banerjee's residence in Kalighat. So these are the questions what the CBI probe team wants to precisely understand, to know and record the statement from Abhishek Banerjee.
3: Hrithik, yes, of course, after 6 hours of grilling him, now we have another round of grilling by the CID. We will keep coming back to you for more on that. Staying with news of West Bengal, it is the Mamata Banerjee team versus the rebels. That's only growing further and further. Now, as per sources, 20 rebel MPs are likely to be holding a very key meeting that's going to be taking place here in the national capital. And, chairing that meeting, of course, had to be Suvindu Adhikari, the Chief Minister of West Bengal. But that plan has been cancelled. This meeting, it was very, very crucial and very vital because this was really coming about just before a meeting that's going to be taking place between the rebel MPs and the Lok Sabha Speaker, Om Birla, which is scheduled for tomorrow. And then we have Mamata Banerjee there also holding meetings with her supporters and her loyalists. And on the other side, she has removed those rebel MPs from their party positions. While Team Mamata alleges that there are MLAs that are being threatened, this really comes about after another TMC MLA has resigned from the party. Let's listen in.
6: Have you resigned recently? You have sent the resignation letter. We were hearing the news.
7: I sent my resignation to Chairperson Mamata Banerjee of AITC.
6: What was the reason of resignation, if I could ask you, Mr. Bunia?
7: I'm not going to explain everything today. I will speak to the people and the press after a few days.
6: All right.
7: But you can take it for granted that I was not willing. Present situation of the state of affairs of the Trinamool Congress.
6: You were unhappy with the present affairs, is what you're saying?
7: Yeah. Very, very unhappy. I was Pradesh Congress president earlier.
6: Right.
7: My Congress life was 52 years.
6: Mm-hmm.
7: So, you know that. After that, I joined my Congress. But present situation is not very compatible to work very freely. And the situation is very, very critical.
8: बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है उसी का अंश है वो तृणमूल के एमपी लोग को लालच भी दिखाया डर भी दिखाया जो लोग कमजोर है जिसको नीति नैतिकता के ठीक नहीं है वो लोग चले गए हैं मैं यही देखता हूँ कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो भारतीय लोकतंत्र का खिलाफ है वो कुछ सफल हुआ
9: डरे हुए हैं कुछ कुछ ने खाया हुआ है लोभ प्रलोभन भी हुआ है वो अभी उसके बारे में भी मालूम है कुछ एक लोग जेल भी गए थे उनके ऊपर भी चिटफंड के केस हैं तो वो लोग हैं जो मुंह दिखाई में मिलता है वो मिल गया, और जो रिश्ता हुआ तो उसमें केस खत्म कर दिए गए। बहुतों को, जैसे दीदी ने कहा, बहुतों को मारा गया, धमकाया गया, घर तोड़ दिए गए। पहले फर्स्ट टाइम

0: करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
1: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा है उनको, जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
2: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल
3: We are going to get you the latest as to what's happening in Maharashtra's Matushri, but let's also switch tracks now to get you the reaction that the Congress party has made, and that is launching a very sharp attack on both the United States and the center over the deaths of the three Indian soldiers that died in that US missile strike that took place near the Strait of Hormuz. It's Manish Tiwari of the Congress party accusing the United States of showing no regret, no remorse, no sympathy or any kind of empathy. He's called on the External Affairs Minister S. Jaishankar to disclose contents, the details of the conversation he had with the US Secretary of State Marco Rubio. The political row comes even as India has launched that very strong protest with the United States over the strike. However, Washington has defended its action, maintaining that all commercial vessels need to comply with instructions issued by the US. The deceased sailors were identified as Aditya Sharma, Shivanand Charasia, and Patnala Suresh, who were among the 24 Indian crew members aboard that vessel when it was struck by the US. Now let's listen in to what Congress's Pawan Khera had to say.
4: Mr. Jaishankar's post says that the words he used was not justified. It's a very mild way of rebuking somebody who's killed your own people. Whereas Rubio's statement is very harsh on us. It's like ulta chor kotwal ko daante. You've killed our people, you have to apologize, unconditional apology. There are international laws governing. You can't attack a commercial vessel of a third country in a conflict. Why was Mr. Jaishankar so apologetic? We've lost lives. We should have demanded apology, unconditional apology. But look at the international humiliation.
3: Calling it an international humiliation by the United States that India has suffered. Well, let's just switch tracks now to Bhopal. A shocking case has emerged of alleged medical negligence. This is from the Ames Hospital. A three-year-old boy undergoing treatment for blood cancer reportedly died after he was injected with formalin. This is formalin is a toxic substance. That is what was in the syringe that was given to this three-year-old child instead of giving him the prescribed medication. The incident has taken place back in December of last year, but the police have now managed to register that FIR against the two nursing officials following an internal inquiry at the Ames Hospital in Bhopal. Now, the probe has found that that highly toxic chemical used to preserve tissue samples had been filled into that syringe meant for lab use and was allegedly left near a patient's bed in violation of protocols. Now, the police have booked those two nursing staff members for causing death by negligence.
5: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मैंने मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगी, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
8: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
9: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
10: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
11: It's also important that how they are reshaping the industries.
12: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
7: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: Let's now take you through the top developments coming in at this hour. Well, Didi versus Rebels fight is now growing further.
13: Welcome back to the Made in Place Summit. There's a really lovely energy out here in the exhibition space. People are taking a break, looking at old photographs, playing simple games, and honestly, just letting themselves be a little innocent again. And that brings us beautifully to our final segment of the day, because behind all the big policies and scientific studies, there are people who bring the magic to life every morning. And today they are telling us why they do the work that they do.
14: तबस्सुम जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आप प्ले यानी कि खेल में हर रोज काम करते हैं, बच्चे आपके साथ बहुत समय बिताते हैं, जब आप आंगनवाड़ी में होते हैं उनके साथ आप घंटे समय बिताते हैं, चाहे उनकी हंसी हो, उनका रोना हो, उनकी खेल, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूँ आपके एक दिन के काम में आपके लिए एक सफल दिन क्या होगा।
15: मेरे पास हर तरीके का बच्चा आता है मेरी आंगनवाड़ियों में, मेरी साल जो साथ की उनकी आंगनवाड़ियों में, तो मेरा यही उद्देश्य रहता है जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो हंसते हुए जाएं।
14: तबस्सुम, आज हम सब बच्चे बन सकते हैं।
15: हाँ जी, मैं यही कह रही थी, जैसे आपने अपना नाम रखा है बचपन मनाओ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत देर से सभी बहुत मुझसे तो सभी काबिल हैं और

0: मैं तो बहुत छोटी हूँ, आपके छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो सभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्रिएटिविटी की बातें कर रहे थे, रचनात्मक की बातें कर रहे थे, ग्रुपिंग की बातें कर रहे थे। ये सब चीज़ें जब मैं सुन रही थी तो मैं कह रही थी ये तो मैं अपनी कक्षा में कराती हूँ, ग्रुपिंग करती हूँ मैं ग्रुपिंग ऐसे करती हूँ जैसे मेरी क्लास में जो पुराने बच्चे हैं वो सीख चुके हैं, अब नए बच्चे आ रहे हैं वो उनका कंटेंट बीच में चल रहा है। मैं क्या करती हूँ, एक होशियार बच्चा, एक थोड़ा सा नया बच्चा, एक मिडिल बच्चा, तीन बच्चों का ग्रुप इधर बना दिया, तीन का इधर बना दिया, तीन का। मैं उद्देश्य अपना माइंड में रखती हूँ कि ये एक्टिविटी कराने से मेरा ये विकास होगा। जो हम स्टोरी कराते हैं या कोई भी चीज कराते हैं,
1: मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इसके पहले मैं एक्चुअली सुनीता जी से पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहे, किसी बच्चे की हो, किसी परिवार की हो, जिससे आपको लगा कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो वाकई में बहुत ज़रूरी काम है, जैसे अभी शेयर किया तबस्सुम ने हमारे साथ, आपको लगे हाँ जो मैं इन बच्चों के फेस पर खुशी ला रही हूँ, एक मुस्कान ला रही हूँ, ऐसी कुछ कहानी आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे?
2: मेरे यहाँ बच्चे छोटे छोटे आते हैं, 3 साल से ऊपर के, रोते हुए आते हैं बच्चे, अंदर भी नहीं घुसता है क्लास में, रोता है घर जाना है घर जाना है। हम उसे प्यार से बोलते हैं, गोदी में बिठाते हैं, खिलौना दिखाते हैं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आपको पता है, और हम भी करते हैं, लेकिन हम उनको प्रेशर नहीं दे सकते, पढ़ा नहीं सकते, मार नहीं सकते। बच्चा अपने मन से जो करेगा हम वही कराएंगे।
1: बहुत जरूरी है कि प्रेशर नहीं डालना,
2: तभी तो बच्चा हमसे प्यार करेगा, हम भी बच्चे से प्यार करेंगे तभी तो बच्चा हमसे प्यार करेगा।
1: बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया सुनीता जी आपने। नानो जी, आई वांट टू कम टू हियर, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेशन, व्हाई यू डू व्हाट यू डू, व्हाट वुड यू से? आपको क्यों लगता है कि किस तरह का बचपन हमें सही मायने में बचाना चाहिए?
3: बच्चा जब इस दुनिया में आता है, व्हेन चाइल्ड इज बॉर्न, बेसिकली द चाइल्ड इज अ हैप्पी चाइल्ड एंड एन एक्सप्लोरेटिव चाइल्ड, ही नीड्स टू नो मोर, ही हैज सो मेनी वेरिड काइंड्स ऑफ नीड्स। सो बेसिकली दैट नीड फुलफिलमेंट इज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड इन प्ले। द चाइल्ड बिकम्स एक्सप्लोरेटिव, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो अबाउट सर्टन थिंग्स, मे बी यू नो व्हेन दे आर प्लेइंग पैरेलल और दे आर प्लेइंग इन अ पेयर ग्रुप। और यहाँ तो बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं, आंगनवाड़ी की बातें हो रही हैं, जिसमें हम अगर एक तरीके से सोचें तो बच्चों को वो करने दिया जाता है और बहुत समय तक करने दिया जाता है, देयर इज लेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग। फिर बहुत ज़्यादा समय होता है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जिसे हम रेपिटेटिवली कर सकते हैं, तो वो खुशी देती हैं बच्चों को। I feel great about it. I feel happy about it. And that is where my natural living being comes out.
1: Parul, in fact, you know, I want to ask you, we today, in today's day and age, I think as parents, most of us always measure child success by the report card. But what you do is like you really work on other components like a child's confidence, their sense of safety, you know, what brings them joy and laughter. How do you look out for those signs, what are really important, and what are the signs you really look out for? Wo aap hamare sath share kariye.
4: Conventional schooling was more of marks oriented, right? And the results were announced at the fag end of the year, right? But now the modern schooling is not like that at all. We are working on the skill development of the learners. We are not focusing on progress now, we are focusing on the process of learning, right? So throughout the year, we keep on observing, we interact with the learners, we record their, skills through our recordings, like anecdotal records or portfolios. We just observe how they are interacting in the classrooms, how, they are working on their research skills, their thinking skills, self-management skills. So we are recording the situation in which that child is, collaborating with others, how they are interacting with others. So real life application is now crucial, yeah, rather than just the marks or the grades.
5: Well, if these sessions didn't remind us of protecting childhood is a critical job that we need to do, and I think nothing will. We also learned that childhood or play isn't distant from learning, it is learning. With that, we've come to the end of this chapter of Made in Play by Extra Foundation and NDTV. But do not grow up just yet, because in the next episode, we'll be talking about modern fatherhood, magic of music, and also invisible playgrounds of inclusion. Till then, you know what you have to do. Protect childhood and play!

0: after the meeting, and amid the speculation of Operation Tiger, as far the number is concerned, we can at this given point of time inform the viewers that, you know, Uddhav Thackeray has the hold over its MP after still the meeting is going on. So we will have to wait and watch out for, and also understand the reason why those two MPs didn't join or why they are not reachable. But rest of them, either through online or physical presence, have come to the meeting, and meeting is still underway. Back
1: right.
0: to you.
1: Thank you so much. We will keep coming back to you for more on that. And this is happening amid that growing speculation over that alleged Operation Tiger by the Eknath Shinde-led Shiv Sena faction. Uddhav Thackeray there holding that meeting, like my colleague Abhishek was pointing out, the meeting that has been called amid reports claiming that the Shinde camp is attempting to woo 2 to 3 Shiv Sena UVD MPs in a bid to bolster its numbers as far as the parliament is concerned. Responding to the speculations, the Shiv Sena UVD leader Sanjay Raut has said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs has basically been called, and this is just something that happens routinely so per month. This is something that happens every month, and this is in order to get that review meeting, and that is exactly what's taking place. However, Sanjay Jadhav, as well as Bhau Saheb Vak Chaure and UBT MP and Om Prakash have not attended that meeting, that key meeting, while the Shinde camp has dismissed the claims that are being made. I deny that existence of any Operation Tiger. The reports have fueled fresh speculation.
2: कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी, जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे, तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। आप देखो
3: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं, और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
4: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
5: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए? शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा? लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
6: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये, आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
1: A loyalty test for Uddhav Thackeray there. We will keep tracking that story and coming back to you with a lot more on the other side. For now, sitting into a short break.

समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना, हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट मैक्रो अभी भारत यात्रा के दौरान आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत और फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दिशा में एक कदम है। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। आईआईटी दिल्ली के बोर्ड के चेयरपर्सन मेरे मित्र हरीश सालवे जी ने इसके आयोजन में बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए मैं उन्हें और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, आपको यहां भारत के भविष्य की झलक दिखाई देती है, आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है, आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। यहां कोई एआई से गांवों का जीवन बदलने के लिए काम कर रहा है, कोई किसानों की मदद के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ युवा स्मार्ट सिटीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नए मटेरियल से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कोई ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी से एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित कर रहा है, और कुछ स्टार्टअप्स डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विथ स्केल एंड स्पीड,
भारत

innovates for a sustainable future and Bharat innovates for the whole world. साथियों, आज बहुत सारे VCs और इंडस्ट्रियल लीडर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं. मैं उनके सामने विशेष तौर पर भारत से आए इन नौजवान साथियों की प्रशंसा करूंगा. यहां जितने भी साथी आए हैं, उन्होंने पुराने रास्ते पर चलने की बजाय उसको छोड़ करके उन्होंने एक नई जगह का रास्ता चुना है, एक नई लीक बनाई है. और यहां आप सबको 100 सवा 100 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है. और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. साथियों, दुनिया के लिए ये डेकेड डिसरप्शन और डेवलपमेंट दोनों का है. संघर्षों और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्व एक अभूतपूर्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं, तो अवसर भी उतने ही ज्यादा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है. हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है. आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो. और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन. साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है. यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है. हमारे AI विजन का भी मूल तत्व है AI फॉर ऑल. सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय. दिल्ली में आयोजित AI इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी. साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है. इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है. यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है. यहां मौजूद स्टार्टअप जगत के साथ आप सभी साथियों के लिए भी ये उतनी ही बड़ी प्रेरणा है.

फ्रेंड्स, इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है। आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए हैं। युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी। आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को क्रिएट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विद इंडिया। मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: part of it or organizing it all get prosecuted. When such prosecutions happen, when FIRs get registered, when police go and intervene in these child marriages, people realize that this is a crime. This is they realize that this is something which is illegal. And once cases get starting getting registered, you know, it creates a widespread message across the society. So on the one side, of course, community engagement, engagement with panchayats, faith-based leaders, we are doing that. But on the other side, JRC partners across the country are actively working with law enforcement agencies and the child protection, child marriage prohibition officers to see that cases get registered. That sends a very strong message. So both prosecutions as well as engagements will lead this journey. And of course, our special focus on connecting people to skills, empowering girls, getting monitoring dropouts in schools, connecting them to schemes, making education more accessible to girls. These are also some of the things in which we are working actively with the government.
1: And cases will get registered when there is more awareness is what...
0: Yes, of course, of course.
1: Let me bring in the other panelists as well. Dr. Shailendra Pandya, my question is to you. Your organization works directly with communities. What changes are you seeing that statistics alone cannot capture?
2: सबसे बड़ा एक चेंज या बदलाव तो हम ये देखते हैं पिछले एक दशक में, पिछले एक डेकेड में, अगर एनएफएच 4 की बात करें, एनएफएच 5 की बात करें, आज एनएफएच 6 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो जहां परसेंटेज तो बिल्कुल गिरा है बाल विवाह को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारी समुदाय की सिस्टम की सोच में। आज मैं देखता हूं कि जहां पहले इंजंक्शन ऑर्डर सेक्शन 13 में जारी नहीं हो पाता था, जस्ट राइट चिल्ड्रन अलायंस के साथ मिलकर हमने लीगल इंटरवेंशन को भी सुनिश्चित किया है। तो आज मैं देखता हूँ ट्राइबल एरिया में, मैं बिलोंग करता हूँ उदयपुर ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन से, वहां पहली बार इंजंक्शन ऑर्डर रिलीज होने लगे हैं। जनप्रतिनिधि जहां पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे कि समुदाय का वोट इन्वॉल्व होता है, हमारा बाल विवाह मुक्ति रथ उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा, उन्होंने ओथ लिया, प्लेज लिया कि हम लोग बाल विवाह मुक्त भारत चाहते हैं। तो आज कहीं भी पर भी जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट बाल विवाह होने को लेकर नहीं देखने को मिलता है। हमने जैसा भी रविकांत सर कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, बाल संसद चिल्ड्रन पार्लियामेंट के माध्यम से उन बच्चियों को जो एडोलसेंट ग्रुप से बिलोंग करती हैं उनको अवेयर किया गया। आज एडोलसेंट ग्रुप के बच्चे ना केवल अपना बाल विवाह नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि कई सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है जो बच्चे खुद रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अभी रिसेंट आपने देखा राजस्थान से कई सारे केसेस आए जिसमें खुद बच्चियों ने कंप्लेन दिया है हमारी चाइल्ड लाइन को, हमारी टीम को, जस्ट राइट की टीम को, कि मेरा बाल विवाह रोका जाए। तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव समुदाय में, बच्चों में और सिस्टम में भी देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि चाहे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू था, लेकिन जितना लेकर उसको स्टेक होल्डर्स ओरिएंट होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, वो उतना ट्रेनिंग शायद नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे सारे फील्ड ऑफिसर्स ट्रेंड हुए, स्टेक होल्डर्स ट्रेंड हुए, मैं चाइल्ड राइट कमीशन में भी रहा हूं, मैं देखता हूं जितना ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पहले नहीं हो पा रहा था उतना ट्रेनिंग अभी रिसेंट इन सब में हो पाया। पर डेफिनेटली समुदाय और सिस्टम दोनों पैरेलल अलग अलग काम नहीं कर सकते।
1: Well, it's so heartening to hear that children feel they have the agency to come forward and fight for their rights. Vandana ji, इस नए सर्वे में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि जब लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं तो बाल विवाह कम होते हैं। आपकी क्या राय है इस पे और आपने अपने गांव में इस बदलाव को कैसे देखा है? How have you seen this change happen?
3: मेरे गांव में जब से मैं सरपंच हूँ तब से तो कोई चाइल्ड मैरिज हुई ही नहीं है और आसपास के गांव में भी बहुत अवेयरनेस हो रही है इस मामले में। और अब वुमेन एजुकेशन बढ़ा है, इसका आंकड़ा बढ़ा है और यहाँ पर जींद में यूनिवर्सिटी भी आ गई है, तो इसमें 80% तक हम बोल सकते हैं लड़कियां हैं, 20% ही जस्ट लड़के हैं इसमें। तो इससे बहुत अवेयरनेस आई है चाइल्ड मैरिजेस में, तो लड़कियां खुद अपने करियर को प्रायोरिटी दे रही हैं और अब वो खुद विरोध करती हैं इस बात का कि हमें पहले करियर बनाना है, हमें पहले खुद अपने दिमाग को ग्रो करना है, अपने करियर को ग्रो करना है, तब जाके हम मैरिज करेंगे, काबिल होंगे तभी मैरिज करेंगे।
1: Let's talk to Karminder ji as well. आप सालों से एक CMPO के रूप में ग्राउंड पर काम कर रही है और बाल विवाह रोकने के लिए आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। पिछले 10 साल में Karminder ji आपने ज़मीनी हालत कैसे बदलते हुए देखा है और आपके हिसाब से ये बदलाव किस वजह से आया है और किस किन लोगों ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है इस बदलाव को लाने में?
4: जी, पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है बाल विवाह के मामले में। एक तो 10 साल पहले जब हम देखते थे बाल विवाह के रीज़न अलग थे, उस वक्त बड़ी बहन के साथ छोटी बहन की शादी कर दी जाती थी और

0: मिला है, मुझे मिठाई खिलाकर चला गया। ये बड़ी दुख की बात है। आई एम सो हार्ट।
1: वेलकम बैक डॉक्टर पांडे। वी ऑफन लुक एट लॉ इन्फोर्समेंट एंड ग्रासरूट्स एक्टिविज्म एज टू सेपरेट पिलर्स, बट ऑन द ग्राउंड सर, अ लीगल बैन ओनली वर्क्स इफ समवन स्पीक्स अप इन टाइम। जेआरसी हैज बीन इफेक्टिव इन क्रिएटिंग कोलैबोरेशंस एंड ब्रिंगिंग द इकोसिस्टम टुगेदर। हाउ हैज द पार्टनरशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व्ड टू कैच दीज केसेस before a marriage takes place? How are you working together to turn local intelligence into immediate legal prevention?
2: JRC Alliance के through एक best innovation जो मुझे देखने को मिला field में, और जिसके best result भी हम लोग देख पा रहे हैं, वो ये था कि हम लोगों ने multiple activities को on field, on ground देखा। जैसे first हमारा था कि हम लोग community based जो हमारी networks हैं, like committees हैं, Mission Vatsalya central government की बहुत पुरानी scheme चल रही है कि हम लोग चाहते हैं VCPC विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बने, ग्राम पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बने, और इनके थ्रू चाइल्ड राइट चाइल्ड प्रोटेक्शन को इंश्योर ऑन ग्राउंड किया जाए। लेकिन ये बहुत एक चिंता का विषय है कि वर्ष 2012 से अभी तक उस लेवल पर ही एक्टिव फंक्शनल नहीं हो पाई थी। तो जेआरसी के थ्रू जो मैं एक बेस्ट पार्ट देखता हूँ, इन्होंने 50-50 हम लोगों ने इस पार्टनरशिप में विलेजेस को टारगेट किया कि हम लोग ऐसे प्रोमिनेंट या ऐसे जहाँ हाई रिस्क वाले एरियाज हैं, जोन हैं, वहां के विलेजेस को आइडेंटिफाई करके उन VCPCs को फंक्शनल करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर एनजीओ वहां पर ना भी हैं तो भी ओनरशिप के साथ वो कमिटीज फंक्शनल बने, एक्शन टेकर मोड में आए और वो बाल विवाह को रोकें। तो मुझे खुशी है कि आज मोर देन 500 कमिटीज ऐसी राजस्थान, सदर्न राजस्थान में हम लोग फंक्शनल कर पाए हैं। उनके सरपंच एक्टिव हुए हैं, उनको ट्रेनिंग मिला है, ओरिएंटेशन मिला है, और आज इन सारे सरपंच ने अपनी पंचायतों में अपने एक प्लेज लिया है। बहुत सारे सरपंच ने नारे भी लिखवाए कि आप बाल विवाह की सूचना हमें दें, हम आपको पुरस्कृत करेंगे। मतलब वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं अपने ऐसे लोगों को जो उनको सूचना दे रहे हैं। ये जो एक बदलाव रहा, इससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। अब बात करते हैं हम प्रशासन की। तो डेफिनेटली प्रशासन की ओर से जो हमारा एक ऑर्डर जो रिलीज हुए, और उसमें बहुत बड़ा योगदान था जीआरसी नेटवर्क के थ्रू हाई कोर्ट में जो PIL दाखिल किया गया कि इतने बाल विवाह की संभावना है, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर हो। तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस PIL पर गौर किया और इंस्ट्रक्शन जारी किए कि सरपंच और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो CWPO हो, इन सबको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से ऑन ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट DM तक भी जो ऑर्डर आने चाहिए, उस पर जितना संज्ञा काम होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो डेफिनेटली जीआरसी ने ना केवल ट्रेनिंग्स और इनके माध्यम से लोगों को ओरिएंट किया, बल्कि लीगल कंप्लायंसेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो आज ये दोनों साथ मिलकर, हमारे NGOs भी, सिविल सोसाइटी के साथ साथ गवर्नमेंट स्टेक होल्डर भी, और साथ साथ हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में आकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए प्रयासरत हैं।
1: So I think what Dr. Pandya is trying to say there is also how important communication is at every level when it comes to an issue as serious as child marriage. Karminder ji, aapse bhi puchna chahungi, as CMPO, aap administration ka hissa hain, to aap tamam NGOs aur sansthanon ke saath milkar kaise kaam karte hain? We just heard communication itna bada role play karta hai in cheezon mein. कि वो आपको खबर आके दे और फिर आप एक्शन ले, प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे होता है?
3: जी, कानून अकेले अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। और जो हमारी NGOs हैं, जिसमें JRC और MDD तो हैं ही, जो बहुत ज़्यादा कैंपेन मोड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे भारत ज्ञान विज्ञान समिति है, हिम्मत है रोहतक में, हरियाणा में, जो महिलाओं के बीच में काम करती हैं, तो वो जो लोग हैं NGOs के, वो हर रोज़ पब्लिक के बीच में होते हैं और उनको वो अवेयरनेस का काम करना है। साथ में हम कोलैबोरेशन में ही काम करते हैं, हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम मिलके ही करते हैं। एक जगह पे जाते हैं और वहाँ मिलके विद बैनर्स हम लेते हैं, वहाँ पे अपने पैम्फलेट्स भी बांटते हैं लोगों को। और हरियाणा सरकार ने और महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरे हरियाणा में, हर जिले में हमारे बड़े बड़े बैनर्स लगवाए हैं, होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिन पे हमारा नंबर डिस्प्ले है, हमारा नाम, नंबर, एड्रेस बाल विवाह के खिलाफ। तो इतने बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर लग गए, स्कूल्स के बाहर लग गए, पुलिस थानों के बाहर इस तरह के होर्डिंग्स लग गए, गाँव में जगह मंदिरों में हमने रिलीजियस प्लेसेस पे ये लगाए, और रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हमने मिल के काम किया। तो इसका फ़र्क ये पड़ा कि कहीं शादी हो रही होती है तो लोग रिपोर्ट करते हैं।
4: जी
3: एमडीडी का तो कैडर है ही जो नीचे है।

0: वो काम कर रहे हैं, उसके अलावा बोर्ड पढ़ के भी बहुत लोग इन्फॉर्म करते हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जब कोई देखता है तो 112 पे या हमारे नंबर पे या जस्ट राइट के नंबर पे, एमडीडी के नंबर पे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किए हुए हैं अपने अपने ज़िलों में ये, तो हमारे पास सूचनाएँ आ जाती हैं, फिर हम मौके पर संबंधित थाने की पुलिस को लेके जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को हम समझाते हैं कि आप शादी करोगे तो उसके ये इम्पैक्ट होंगे, FIR दर्ज होगी, जेल में जाओगे। साथ में हरियाणा सरकार ने 2020 में एक नियम लागू किया था कि जो नाबालिग की शादी है उसको कोई वैलिडिटी नहीं रही है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। तो हम उनको बताते हैं कि आप ये शादी करोगे तो इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई लीगल कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो नहीं मिल सकते हैं, लड़की के लीगल राइट्स हैं। और अगेन मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि मैंने तो खास तौर पे शादी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि शादी चलाने के लिए जितना कमिटमेंट, जितनी मैच्योरिटी चाहिए वो एक बच्चे में नहीं हो सकती, और जब बच्चा शादी के लायक होगा तब तक उसके बच्चे हो चुके होंगे, तो ना तो बच्चे ढंग से बड़े हो पाएंगे, ना वो मदर ढंग से उन बच्चों की देखभाल कर पाएगी, उसके हेल्थ इम्पैक्ट अलग से हैं, लीगल इम्पैक्ट्स अलग से हैं। तो ये सारा मिलके हम लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त लोगों के बीच में कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ही कैंपेन मोड में ही हम लोग ये काम करते हैं।
1: यू आर वन ऑफ द फुट सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड एंड यू आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज टू यू मिस्टर रविकांत, एज वी मेंशनड अर्लियर इन द शो, देयर आर स्टिल सम स्टेट्स दैट शो अ राइज इन द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, दिल्ली, पंजाब, गोवा आर अमंग देम। Can we still say, is India moving towards the tipping point to end child marriage by the year 2030, sir?
2: 100% India will reach the tipping point at this decline, 3% decline, and there will be further decline because of the momentous work which have happened. India will see the end of child marriage. As I said, that this generation will end the scourge of child marriage. We have also to understand that child marriage is sexual exploitation of young girls.
1: Of course.
2: And that is what the Supreme Court of India says, that is what we at JRC say, that this is sexual exploitation of, and it's a very serious crime because of the protection of POCSO law which we have. Apart from that, the Honorable Supreme Court of India in the landmark judgment filed by the JRC partner has said that, has created convergence mechanisms at the district level like ASHA committees, which bring in all the administration, civil society and everyone together. There at that level, we are engaging with district agencies and bringing in that catalytic change which can happen because of people coming together. That sends a very strong message. So increase in prosecutions, strengthening of education system, implementation of the law, bringing the fear of the law among the people, community engagement, girls' education, together. And also, due to this landmark judgment, lot of state governments have launched their state action plan. The government of India has launched its action plan on ending child marriage. With this huge focus by the government and the big momentous work being done by Just Rights Partner at the ground, and this year we are going to engage across the country, not only 450 district, but across the country we are going to run this campaign. We are going to do it very aggressively because we want to end this, we want to reach the tipping point.
1: And you're saying in 4 years from now that tipping
2: point
1: will come.
2: 100%, we are very sure.
1: All right. Now the NFHS6 shows that structural change is possible. The synchronized efforts of governments, legal institutions, faith leaders and networks like Just Rights for Children prove that child marriage is not an unchangeable reality. If we maintain this momentum, sustain the pressure and protect our girls' right to education, a child marriage-free India is well within our reach.

जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम 5 विद मी रेशा सैगल
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
3: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper,

0: Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे
3: सर,
2: तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी
4: सिंबल के लिए जाएंगे आप
2: हाँ जरूर
5: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to vote 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
6: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बची टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी पहले भाग जाएंगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप देखो
7: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो कभी ऑपरेशन लोटस कभी ऑपरेशन टाइगर आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है कोई नई बात थोड़ी है हर दल करता है हम भी कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए
8: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है
3: हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
4: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
8: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: Shifting our focus, following Akhilesh Yadav's controversial allegations that crores in the Ram Temple donation funds were missing, the government is now monitoring the situation very closely. The state government has set up a special three-member probe team to investigate the matter. SP Chief Akhilesh

0: Yadav earlier alleged that rows of funds from the donations were missing and the matter was extremely sensitive, demanding a court-monitored probe. The BJP has come out and clarified that Chief Minister Yogi Adityanath has set up the SIT upon the request of the temple trustees.
1: अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा अधिकारियों बताओ हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए कि बताइए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ले और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे लेकिन बताओ तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की सनातन धर्म का अपमान है
2: उस पे हम बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में एक लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अयोध्या में उसको पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि देश माफ नहीं करने वाला
3: ये बहुत गंभीर विषय है ये सिर्फ चंदा चोरी का इन लोगों की आस्था चोरी का भी विषय है और SIT क्या कर लेगी इसके पहले दर्जनों SIT गठित हुई उसमें क्या हुआ ED CBI की जांच क्यों नहीं ED CBI जांच सिर्फ विपक्ष के लिए है इस प्रकरण में ED CBI की जाँच हो और अदालत के देखरेख में होनी चाहिए
4: देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गलत काम करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा हमारी NDA की सरकार देती है इसमें भी SIT का गठन हो गया है और इंतजार करिए जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी
5: जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है उन्होंने ये SIT कमेटी का अनाउंसमेंट किया है वो पूरी जांच हो जाएगी उसमें जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against 2 nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked 2 nursing staff members for causing death by negligence.
6: एक जो F नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन वो उठा के वो उठा लिया और मैंने मैडम से बोला मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है इसमें एनेस्थिया भी है तो मैडम बोले लाई नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है ये फ्लैशर है मैंने कहा मैडम ये फ्लैशर नहीं है ये बोन मेरो का सामान रखा है इसको मत छेड़ो आप दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने नहीं ये मुझे पता है मैंने कहा SHT मैडम काउंटर पर बैठी हुई है उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड मैं सामने खड़ा था बच्चे के मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से जो कि उस पर F नाम करके लिखा था तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया
7: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर रिन NDTV भोपाल
0: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France.

0: in the state of Maharashtra.
1: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद है उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे, तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बची, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
2: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
3: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
4: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए, और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है, ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा है उनको, जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
5: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही, परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: Shifting our focus, following Akhilesh Yadav's controversial allegations that crores in the Ram Temple donation funds were missing, the government is now monitoring the situation very closely. The state government has set up a special 3-member probe team to investigate the matter. SP Chief Akhilesh Yadav earlier alleged that crores of funds from the donations were missing and the matter was extremely sensitive, demanding a court-monitored probe. The BJP has come out and clarified that Chief Minister Yogi Adityanath has set up the SIT upon the request of the temple trustees.
6: अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ले, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है।
7: उसमें हम बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में। एक लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है अयोध्या में, उसको पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि देश माफ नहीं करने वाला।
8: ये बहुत गंभीर विषय है, ये सिर्फ चंदा चोरी का नहीं, लोगों की आस्था चोरी का भी विषय है। और SIT क्या कर लेगी? इसके पहले दर्जनों SIT गठित हुई, उसमें क्या हुआ? ED CBI की जांच क्यों नहीं? ED CBI जांच सिर्फ विपक्ष के लिए।

0: है इस प्रकरण में ईडी सीबीआई की जांच हो और अदालत के देखरेख में होनी चाहिए।
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गलत काम करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा हमारी एनडीए की सरकार देती है। इसमें भी एसआईटी का गठन हो गया है और इंतजार करिए, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।
2: जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, उन्होंने एसआईटी कमेटी का अनाउंसमेंट किया है, वो पूरी जांच हो जाएगी, उसमें जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
3: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
4: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मैंने मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
5: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
3: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
6: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हां, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
7: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible, and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
6: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, ऐसे सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
7: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
6: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
7: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
3: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.
8: This is where the future shows up first. Conversations with the biggest names in tech and AI. Putting tech through its paces. No fancy jargon or spec sheets, just what matters. If it's shaping the future, you'll see it here first. The Tesla Model Y. This is Tech 360. Real talk, real reviews across the NDT.
3: Welcome back. In an unprecedented move, American AI company Anthropic has switched off its most advanced models worldwide. The decision has been taken after a U.S. government order linked to national security adds to the growing confrontation between the company and the Trump administration. Here is a detailed report that tells you all.
9: Anthropic has just suspended access to its two most advanced models, Fable 5 and Mythos 5, for users across the globe. The move came after the company received a United States export control directive citing national security concerns. The order asked Anthropic to bar foreign nationals from accessing the models, including many of Anthropic's own employees. To comply, the company disabled the models worldwide for everyone. It is believed to be the first time a commercially available frontier AI model has been taken offline following a direct order from the United States government. Anthropic, however, says it disagrees with the decision. The company argues that the reported security flaw was limited. It also says its internal testing found no universal way to bypass the model's safeguards. More importantly, Anthropic warns such risks exist across AI models. And if every model is recalled over isolated vulnerabilities, it could slow innovation across the entire industry. The disagreement didn't begin this week. Anthropic and Trump administration have been locked in disputes over AI policy for months. And now, this latest order has pushed the confrontation into public view. So why should India care? Because India is Anthropic's second largest consumer market after the United States. Indian software developers depend on it on a daily basis. IT firms and AI startups also rely heavily on Claude for coding, research, and productivity. For India, the episode has strengthened calls for investing in indigenous AI research and homegrown foundation models. Because of access to frontier AI can disappear overnight due to another country's national security decisions, it raises an important question. How long can India continue to rely on foreign AI infrastructure? Bureau Report, NDTV World.

0: विषय है, ये सिर्फ चंदा चोरी का नहीं, लोगों की आस्था चोरी का भी विषय है। और SIT क्या कर लेगी, इसके पहले दर्जनों SIT गठित हुई, उसमें क्या हुआ? ED CBI की जांच क्यों नहीं? ED CBI जांच सिर्फ विपक्ष के लिए है, इस प्रकरण में ED CBI की जांच हो और अदालत के देखरेख में होनी चाहिए।
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गलत काम करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा हमारी NDA की सरकार देती है। इसमें भी SIT का गठन हो गया है और इंतजार करिए, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।
2: जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, उन्होंने ये SIT कमेटी का अनाउंसमेंट किया है, वो पूरी जांच हो जाएगी, उसमें जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी।

0: that we were all looking for. Then we cut across to Rika Roy. She's joining us live, our sports editor. Rika, how important is this start for India in this tournament, in this World Cup?
1: Well, let me tell you, the star of the show really was Deepti Sharma today. It was Deepti's match who claimed a 5-wicket haul in the opening match of ICC T20 World Cup for India against Pakistan, as India beat Pakistan by 64 runs. It was an absolute dominant spin display by Deepti Sharma and Sri Charani. Deepti, of course, grabbing 5 and Sri Charani grabbing 3 wickets in that innings. Well, I can also tell you that India did not have a great start. In fact, the Pakistani batters started very well, but once Deepti Sharma came on, she stifled the Pakistani batters, getting those crucial wickets in the middle overs and thereby helping India to have a mammoth win of 64 runs. And as a result, they have also improved on their net run rate. They're currently just behind Australia on the league table. And as you mentioned, there was also stellar contribution from Smriti Mandhana, who scored 68 runs. But the night really belonged to Deepti Sharma, who became the highest wicket taker in T20s when it comes to women's cricket. She now has 166 wickets and sits right on the perch.
0: Rika, this is, as you rightly pointed out, the start that we were looking for. Of course, Super Smriti, she was the star of the match, and she really set the tone and tenor for the entire team. But talking about ahead in this tournament, who are the key competitors for Team India who can match their grit, their determination and their technique on the field?
1: Well, you see, India, will be clashing against some of the very tough contestants. I would say they will come up against Australia also. They will come up against South Africa. The couple of the matches in the league stage against Netherlands and against Bangladesh look to be easy at the moment. But again, remember, it's a T20 format, and T20 can be anyone's game on the given day. So despite, having an easy group, India could experience some of those difficult matches. Also remember, Birmingham spin had a lot of impact, but as they move north, they'll play in Leeds, they'll play back in Manchester in different conditions across the small island. So expect India to encounter different challenges on course of their World T20 campaign. I must mention here that India are the current 50-over world champions, and they have actually began with that momentum in the same vein of form. Deepti Sharma was the player of the tournament in the 50-over World Cup, and coming into the T20 World Cup in the first game, straight away she created an impact with those 5 wickets. So India has sent out a clear warning to the opponents, saying that they are here, they're here for business, and you will have to keep watching them very, very closely.
0: Rika, just a quick word on the losing side. I saw some comments on social media and some people saying that Pakistan team, compared to their performances in the past, has done well in this match. So a word from Team Pakistan from you.
1: Well, I really don't think they have done well in this match, except for that couple of overs, maybe 3 or 4 overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Apart from those 3 overs when they looked like they were in control, and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match. Not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were before. And also, having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things, and they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
0: All right, Rika, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo two or to three Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बची टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी पहले भाग जाएगी घर से बाहर नहीं निकलेगी आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो कभी ऑपरेशन लोटस कभी ऑपरेशन टाइगर आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है और संगठन की मीटिंग तो होती रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए, और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
9: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही, परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal. A 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
10: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
11: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
0: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation.

0: Also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
1: दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग-अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। यहां आप सबको 100 सवा 100 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
2: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible, and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
1: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
2: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action with the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
1: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
2: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
0: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
0: and multiple

0: the other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
1: देखिए हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
2: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी
3: सिंबल के लिए जाएंगे आप।
2: हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है।
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to vote 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी पहले भाग जाएगी घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो कभी ऑपरेशन लोटस कभी ऑपरेशन टाइगर आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है कोई नई बात थोड़ी है हर दल करता है हम भी कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए वो चुन के आए हो कैसे आए शिवसेना की वजह से चुन के आए और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है ऐसे हालात

0: वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
1: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
2: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
3: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
4: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
2: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
5: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में

0: कंट्री लीडर। रिएक्शंस
1: देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
2: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। तुम कोई पार्टी तू था लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर,
3: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे, और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए है, इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं, शायद ये सही भी नहीं होते हैं, चाप है।
0: I mean, growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to vote 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
4: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद है उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे, तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
5: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं, और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
6: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
7: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए, और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद में रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा

0: तो जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
1: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल
2: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal. A 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
3: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लाई, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैश आ रहा है। मैंने कहा, मैडम ये फ्लैश नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कहा, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
4: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
2: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
5: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हां, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2,00,000 से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
6: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the Summit for AI.
5: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
6: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
5: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
6: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
2: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.
7: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
8: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
7: The show that sets the prime time agenda.
8: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
1: नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। हाँ जरूर,
2: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे, और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए है, इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं, शायद ये सही भी नहीं होते हैं, चाप है।
3: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
4: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। आप देखो
5: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
6: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
7: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा है उनको, जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
8: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही. परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही.
3: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal. A 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
9: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है. तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है. मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप. दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है. मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं. तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं. तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी. मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के. मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी. सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था. तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया.
10: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे. बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई. दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया. बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया. फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है. कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल.
3: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
11: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है. इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है. इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है. इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है. हाँ, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
12: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the Summit for AI.
11: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है. हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है.
12: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
11: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future and Bharat innovates for the whole world.
12: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
3: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.
13: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
14: So many attacks.
13: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
14: It's incredible.
13: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
14: Welcome to Left, Right, and Center.
13: Hard facts.
14: War-struck country.
13: Hard questions.
14: In the Ukraine.
13: 30 years of trust.
15: In the Kargil area.
14: North Ukraine. In France. In Italy.
15: At Srinagar.
14: Vishnu Shom for NDTV.
13: Vishnu Shom. Only on NDTV.
16: Launch control. 0 to 100.
17: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
18: This car makes no sense, yet it makes every sense.
19: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
20: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
21: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddharamaiah.
22: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
23: Higher head, check the audio. Higher head, check the audio.
21: Let's do it. Let's do it. Let's start.
24: Breaking story, we're jumping straight into it.
21: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
25: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
26: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
3: Welcome back. In an unprecedented move, American AI company Anthropic has switched off its most advanced models worldwide. The decision has been taken after a U.S. government order linked to national security. It adds to the growing confrontation between the company and the Trump administration. Here is a detailed report that tells you all.
0: Anthropic has just suspended access to its two most advanced models, Fable 5 and Mythos 5, for users across the globe. The move came after the company received a United States export control directive citing national security concerns. The order asked Anthropic to bar foreign nationals from accessing the models, including many of Anthropic's own employees. To comply, the company disabled the models worldwide for everyone. It is believed to be the first time a commercially available frontier AI model has been taken offline following a direct order from the United States government. Anthropic, however, says it disagrees with the decision. The company argues that the reported security flaw was limited. It also says its internal testing found no universal way to bypass the model's safeguards. More importantly, Anthropic warns such risks exist across AI models. And if every model is recalled over isolated vulnerabilities, it could slow innovation across the entire industry. The disagreement didn't begin this week. Anthropic and Trump administration have been locked in disputes over AI policy for months. And now, this latest order has pushed the confrontation into public view. So why should India care? Because India is Anthropic's second largest consumer market after the United States. Indian software developers depend on it on a daily basis. IT firms and AI startups also rely heavily on Claude for coding, research, and productivity. For India, the episode has strengthened calls for investing in indigenous AI research and homegrown foundation models. Because of access to frontier AI can disappear overnight due to another country's national security decisions, it raises an important question. How long can India continue to rely on foreign AI infrastructure? Bureau Report, NDTV World.
1: We've landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars. And that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pavan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
2: I think somehow they're scared. Otherwise, there is no need for them to deny permission.
1: Is the India block, you know, up on its last legs?
2: I had seen in my family, they were very strong supporters of Congress. As long as Indira Gandhi was there, even to an extent Rajiv Gandhi was there, they could slowly, but the disconnect started because of their policies. I really expected some kind of a greater understanding when this man, Mr. Rahul Gandhi, if I go and meet people, that gives me a very entire greater understanding, greater depth. But I felt after walking from Kanyakumari to Kashmir, and the way he understood him, then I said he has become more shallow.
1: You know, it was genuinely a first day, first show kind of perfect political storm for Vijay. What went through your mind when you saw it unfold?
2: I came into politics in 2007, and from then...
1: Two decades. Yeah, amazing.
2: And it was a tough journey for me. And sometimes I felt like giving up. Sometimes I feel like, why the hell I was in politics? I wish I could have such kind of smooth journey like Mr. Vijay. In that way, I said, okay, I was envious. Yeah.
1: You have a good relationship with the BJP and especially with Prime Minister Modi.
2: This man is the future of our country. Hmm. And we need it.
3: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories,
4: and update, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it, and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.

0: संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही. परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही.
1: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from Ames Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
2: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है इसमें एनेस्थिया भी है. तो मैडम बोले लगी नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है ये फ्लैशर है. मैंने कही मैडम ये फ्लैशर नहीं है ये बोन मेरो का सामान रखा है इसको मत छेड़ो आप. दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे नहीं ये मुझे पता है. मैंने कही सष्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं. तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं. तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी. मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के. मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी. सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था. तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया.
3: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे. बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई. दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया. बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया. फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है. कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर रेन एनडी टीवी भोपाल.
1: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
4: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं. अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती हैं लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है. इस रिश्ते में कनेक्शन भी है कन्विक्शन भी है. इस रिश्ते में इनोवेशन भी है इंस्पिरेशन भी है. इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं शेयर्ड विजन भी है. हाँ आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं लेकिन भारत में ऐसे

0: है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी
1: सिंबल के लिए जाएंगे आप।
0: हाँ जरूर।
2: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है। तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं, शायद ये सही भी नहीं होते हैं, चाप है।
3: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to vote 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
4: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
5: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
6: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
7: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए? शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा? लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
8: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल
3: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against 2 nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical, used to preserve tissue samples had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
1: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है इसमें एनेस्थिया भी है. तो मैडम बोले लगी नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है ये फ्लैशर है. मैंने कही मैडम ये फ्लैशर नहीं है ये बोन मेरो का सामान रखा है इसको मत छेड़ो आप. दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगी नहीं ये मुझे पता है. मैंने कही सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं. तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं. तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी. मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के. मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी. सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था. तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया.
9: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे. बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया. लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई. दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया. बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है. लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया. फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है. कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल.
3: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
10: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं. अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है. लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं. भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है. इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है. इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है. इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है. हाँ, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है. और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में contribute कर रहे हैं.
11: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible, and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
10: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे. ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है. हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है.
11: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action with the strengths of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
10: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
11: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
3: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.
12: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
13: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
14: They say good food speaks for itself, but behind every dish lies a story of talent, a story of precision, a story of obsession, and a story of perfection. We're tracking down the finest culinary minds in the country. We're tracking down the icons and the innovators. The shortlist is ready. The kitchens are battlefields because there's only one criterion, absolute excellence. The tables are set. Join me, Veev Sanghvi, for the NDTV Food Awards 2026. Thank you.
15: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
3: And multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act. TMC rebel MPs met the Lok Sabha Speaker Om Birla. Welcome back. In an unprecedented move, American AI company Anthropic has switched off its most advanced models worldwide. The decision has been taken after a U.S. government order linked to national security. It adds to the growing confrontation between the company and the Trump administration. Here is a detailed report that tells you all.
16: Anthropic has just suspended access to its two most advanced models, Fable 5 and Mythos 5, for users across the globe. The move came after the company received a United States Export Control Directive citing national security concerns. The order asked Anthropic to bar foreign nationals from accessing the models, including many of Anthropic's own employees. To comply, the company disabled the models worldwide for everyone. It is believed to be the first time a commercially available frontier AI model has been taken offline following a direct order from the United States government. Anthropic, however, says it disagrees with the decision. The company argues that the reported security flaw was limited. It also says its internal testing found no universal way to bypass the model's safeguards. More importantly, Anthropic warns such risks exist across AI models. And if every model is recalled over isolated vulnerabilities, it could slow innovation across the entire industry. The disagreement didn't begin this week. Anthropic and Trump administration have been locked in disputes over AI policy for months. And now, this latest order has pushed the confrontation into public view. So why should India care? Because India is Anthropic's second largest consumer market after the United States. Indian software developers depend on it on a daily basis. IT firms and AI startups also rely heavily on Claude for coding, research, and productivity. For India, the episode has strengthened calls for investing in indigenous AI research and homegrown foundation models. Because of access to frontier AI can disappear overnight due to another country's national security decisions, it raises an important question. How long can India continue to rely on foreign AI infrastructure? Bureau Report, NDTV World.
15: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
17: So many attacks.
15: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
17: It's incredible.
15: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
17: Welcome to Left, Right, and Center.
15: Hard facts.
17: War-struck country.
15: Hard questions.
17: In the Ukraine.
15: 30 years of trust.
18: In the Kargil area.
17: North Ukraine. In France. In Italy.
19: At Srinagar.
20: I am Srinagar.
21: Vishnu Shom for NDTV.
15: Vishnu Shom. Only on NDTV.
22: Launch control. 0 to 100.
23: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
24: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
23: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
25: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddharamaiah.
26: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
27: High rate, check the audio, high rate, check the audio.
25: Let's do it, let's do it, let's start.
28: Breaking story, we're jumping straight into it.
25: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
29: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
30: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
31: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
29: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
30: The line of control, Shivaroor, NDTV. We've landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage of its own superstars. And that's why it's our pleasure to be joined today on NDTV by Pawan Kalyan, the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Good to have you, sir. You were recently denied permission, sir, on Telangana Formation Day.
0: I think somehow they're scared. Otherwise, there is no need for them to deny permission.
30: Is the India bloc, you know, up on its last legs?
0: I had seen in my family, they were very strong supporters of Congress. As long as Indira Gandhi, even to an extent, Rajiv.
3: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. TMC MP Kakoli Ghosh Dastidar gives a big statement, says all rebel TMC MPs to merge with the Nationalist Citizen Party, extends support to the NDA. Mamta faction leaders Sagarika Ghosh and Kirti Azad meet Speaker Om Birla to submit a letter by Abhishek Banerjee, where he says that the Speaker must not recognize any separate group or faction. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron inaugurate Bharat Innovates in Nice. The event showcases India's innovation ecosystem, startups, technological capabilities, highlighting growing Indo-French cooperation in research entrepreneurship.
10: Aap Bharat aaiye, hamare saath milkar kaam kariye. भारत में डिजाइन कीजिए भारत में डेवलप कीजिए
3: And Congress trains guns on centre over three sailors' death. Congress has asked Jai Shankar to make the call with Rubio public. This comes after US showed no remorse over the death of three Indians despite Jai Shankar's conversation with US Secretary of State. AIIMS Bhopal negligence kills three-year-old cancer patient. Formalin injection kills the cancer child. The injection was mistaken for medicine injection. FIR has been registered against two officials of the nursing department. US President Donald Trump's big claim says that the long-awaited deal to end the war in the Middle East is set to be signed today. Trump also claims that the Strait of Hormuz will reopen to all immediately after the deal is signed.

0: All right, some latest news coming in, and this is good news for India's team. India has defeated Pakistan again. Super Smriti leads India to victory. T20 World Cup, and India has beaten Pakistan. Indian women beat Pakistan by 64 runs. The Indian women's team has defeated the rivals. Richa Ghosh, Deepthi Sharma, they were the stars of this match. India has dominated Pakistan at the T20 World Cup, and that is the mood lifter that we were all looking for. Then we cut across to Rika Roy. She's joining us live, our sports editor. Rika, how important is this start for India in this tournament, in this World Cup?
1: Well, let me tell you, the star of the show really was Deepthi Sharma today. It was Deepthi's match who claimed a 5-wicket haul in the opening match of ICC T20 World Cup for India against Pakistan, as India beat Pakistan by 64 runs. It was an absolute dominant spin display by Deepthi Sharma and Sri Charani. Deepthi, of course, grabbing 5 and Sri Charani grabbing 3 wickets in that innings. Well, I can also tell you that India did not have a great start. In fact, the Pakistani batters started very well, but once Deepthi Sharma came on, she stifled the Pakistani batters, getting those crucial wickets in the middle overs and thereby helping India to have a mammoth win of 64 runs. And as a result, they have also improved on their net run rate. They're currently just behind Australia on the league table. And as you mentioned, there was also stellar contribution from Smriti Mandana, who scored 68 runs. But the night really belonged to Deepthi Sharma, who became the highest wicket taker for highest wicket taker in T20s when it comes to women's cricket. She now has 166 wickets and sits right on the perch.
0: Rika, this is, as you rightly pointed out, the start that we were looking for. Of course, Super Smriti, she was the star of the match, and she really set the tone and tenor for the entire team. But talking about ahead in this tournament, who are the key competitors for Team India who can match their grit, their determination and their technique on the field?
1: Well, you see, India, will be clashing against some of the very tough contestants. I would say they will come up against Australia also. They will come up against South Africa. The couple of the matches in the league stage against Netherlands and against Bangladesh look to be easy at the moment. But again, remember, it's a T20 format, and T20 can be anyone's game on the given day. So despite, having an easy group, India could experience some of those difficult matches. Also remember, Birmingham spin had a lot of impact, but as they move north, they'll play in Leeds, they'll play in Manchester, in different conditions across the small island. So expect India to encounter different challenges on course of their World T20 campaign. I must mention here that India are the current 50-over world champions, and they have actually began with that momentum in the same vein of form. Deepthi Sharma was the player of the tournament in the 50-over World Cup, and coming into the T20 World Cup in the first game, straight away she created an impact with those 5 wickets. So India has sent out a clear warning to the opponents, saying that they are here, they're here for business, and you will have to keep watching them very, very closely.
0: Rika, just a quick word on the losing side. I saw some comments on social media and some people saying that Pakistan team, compared to their performances in the past, has done well in this match. So a word from Team Pakistan from you.
1: Well, I really don't think they have done well in this match, except for that couple of overs, maybe 3 or 4 overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Apart from those 3 overs when they looked like they were in control, and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match, not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were Before, and also having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things, and they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
0: All right, Rika, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after a strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for a separate sitting in the Parliament, and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा टू थर्ड है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी पहले भाग जाएंगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
9: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from Ames Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
10: एक जो F नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कहा, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान लगा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कहा, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
11: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
0: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
7: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में contribute कर रहे हैं।
12: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
7: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, ये सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
12: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
7: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future, and Bharat innovates for the whole world.
12: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
0: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on The Solution. Thank you so much for watching.
13: to NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.

0: चाप है।
1: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo two or to three Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
2: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद हैं, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी, जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे, तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
3: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे नौ सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर, आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं, कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
4: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है।
5: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए हो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए, और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है, ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा, लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
6: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही, परंतु ज्यांना यायचं असेल
1: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from Ames Bhopal, a 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical, used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
7: एक जो F नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी, मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं साइड में सामने खड़ा था बच्चे के, मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी, सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
0: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
1: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
8: Duniya mein alag-alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
9: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
8: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, ऐसे सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
9: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here. but also because a few days ago, you've become the prime minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action or the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
8: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा भारत innovates with scale and speed. भारत innovates for a sustainable future and Bharat innovates for the whole world.
9: We practice making India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this, and this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
1: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: All right, some latest news coming in, and this is good news for India's team. India has defeated Pakistan again. Super Smriti leads India to victory. T20 World Cup, and India has beaten Pakistan. Indian women beat Pakistan by 64 runs. The Indian women's team has defeated the rivals. Richa Ghosh, Deepthi Sharma, they were the stars of this match. India has dominated Pakistan at the T20 World Cup, and that is the mood lifter that we were all looking for. Then we cut across to Rika Roy. She's joining us live, our sports editor. Rika, how important is this start for India in this tournament, in this World Cup?
1: Well, let me tell you, the star of the show really was Deepthi Sharma today. It was Deepthi's match who claimed a 5-wicket haul in the opening match of ICC T20 World Cup for India against Pakistan, as India beat Pakistan by 64 runs. It was an absolute dominant spin display by Deepthi Sharma and Sri Charani. Deepthi, of course, grabbing 5 and Sri Charani grabbing 3 wickets in that innings. Well, I can also tell you that India did not have a great start. In fact, the Pakistani batters started very well, but once Deepthi Sharma came on, she stifled the Pakistani batters, getting those crucial wickets in the middle overs and thereby helping India to have a mammoth win of 64 runs. And as a result, they have also improved on their net run rate. They're currently just behind Australia on the league table. And as you mentioned, there was also stellar contribution from Smriti Mandhana, who scored 68 runs. But the night really belonged to Deepthi Sharma, who became the highest wicket taker for highest wicket taker in T20s when it comes to women's cricket. She now has 166 wickets and sits right on the perch.
0: Rika, this is, as you rightly pointed out, the star that we were looking for. Of course, Super Smriti, she was the star of the match, and she really set the tone and tenor for the entire team. But talking about ahead in this tournament, who are the key competitors for Team India who can match their grit, their determination and their technique on the field?
1: Well, you see, India, will be clashing against some of the very tough contestants. I would say they will come up against Australia also. They will come up against South Africa. The couple of the matches in the league stage against Netherlands and against Bangladesh look to be easy at the moment. But again, remember, it's a T20 format, and T20 can be anyone's game on the given day. So despite, having an easy group, India could experience some of those difficult matches. Also remember, Birmingham spin had a lot of impact, but as they move north, they'll play in Leeds, they'll play back in Manchester, in different conditions across the small island. So expect India to encounter different challenges on course of their World T20 campaign. I must mention here that India are the current 50-over world champions, and they have actually began with that momentum in the same vein of form. Deepthi Sharma was the player of the tournament in the 50-over World Cup, and coming into the T20 World Cup in the first game, straight away she created an impact with those 5 wickets. So India has sent out a clear warning to the opponents, saying that they are here, they're here for business, and you will have to keep watching them very, very closely.
0: Rika, just a quick word on the losing side. I saw some comments on social media and some people saying that Pakistan team, compared to their performances in the past, has done well in this match. So a word from Team Pakistan from you.
1: Well, I really don't think they have done well in this match, except for that couple of overs, maybe 3 or 4 overs in the beginning when they batted. They got some easy runs because India did not feel very well. Yeah. Apart from those 3 overs when they looked like they were in control, and even scoring 52 runs in the power play, they were never in control of this match. Not while bowling, not even while batting. So I really can't say that they performed well compared to what they were you know, before. And, you know, also having said that, I would say that Pakistan did Pakistan things. And they lost very easy wickets this evening. They lost wickets to very bad shots, but it almost looked like they could control the innings. They gave away their wickets very, very easily.
0: All right, Rekha, thank you so much for putting that into perspective. And some victories are very special, and winning against Pakistan is always a special one. Multiple developments, twists and turns have pushed the TMC rebellion saga into its final act, it seems. Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla just after strategy huddle at the residence of Union Minister Bhupendra Yadav and announced a merger with the Nationalist Citizen Party of India. Kakoli Ghosh Dastidar, who's leading the rebellion, has stated that they have requested the Speaker for separate sitting in the Parliament, and 20 TMC MPs will be merging with the NCPI. She has also added that in future they will be extending support to NDA and will work under the leadership of Prime Minister Modi. On the other hand, TMC General Secretary Abhishek Banerjee has written a letter to the Speaker Om Birla, requested not to recognize any other faction within the party. Citing a Supreme Court judgment from 2023, he has written that MPs don't have the right to appoint a whip or a parliamentary leader. Reactions.
2: देखिए हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से दो तिहाई 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में
3: नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे तुम कोई पार्टी तू था लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो क्योंकि एक पार्टी चलता है ना ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी हाँ जरूर
4: देखिए जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं वो जाली है मिथ्याचारी है व्यभिचारी है वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं ममता जी काकोली को जो दिए है इतना ममता जी जिंदगी में और किसी को दिया है बोल के मेरा मालूम नहीं है तो देखिए सब अपना इच्छित से जाते हैं शायद ये सही भी नहीं होते हैं चाप है
0: Amid growing speculation over an alleged Operation Tiger by Eknath Shinde-led Shiv Sena, Uddhav Thackeray today called a meeting of his party MPs at Matoshri. The meeting was called amid reports claiming that Shinde camp is attempting to woo 2 or 3 Shiv Sena UBT MPs in a bid to bolster its numbers in Parliament. Responding to speculation, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut said that Uddhav Thackeray's meeting with the MPs was called as a routine monthly review. While Shinde camp has dismissed the claims and denied the existence of any Operation Tiger, the reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
5: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते कौन डर रहा है ये रेगुलर मीटिंग है हर महीने में एक मीटिंग होती है विधायक सांसद एक साथ आते हैं हमारे नव सांसद हैं उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने उनसे बातचीत होगी जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें नई बात कोई नहीं जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी पहले भाग जाएंगे घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप देखो
6: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
7: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
8: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा? लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
9: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही। परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a three-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
10: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कहा, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद

0: नहीं मानी, मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया, और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
1: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ हरप्रीत कौर, एनडी टीवी भोपाल।
2: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister's visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
3: Duniya mein alag alag desh एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100 सवा 100 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है, और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
4: Our two countries share the mission of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
3: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, ऐसे सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
4: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become

0: tiger. The reports have fueled fresh speculations on the political alignments and realignments in the state of Maharashtra.
1: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद है, उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी बीजेपी, पहले भाग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। आप देखो
2: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे नौ सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
3: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
4: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा? लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
5: मुळामध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
0: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal, a three-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against two nursing officials following an internal hospital inquiry. Now, the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked two nursing staff members for causing death by negligence.
6: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कहा, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कहा, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तीन बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
7: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता, जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत

0: ऐसा कोई नियम बना है क्या कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख है वो हमारे सांसदों को मीटिंग को नहीं बुला सकते? कौन डर रहा है? ये रेगुलर मीटिंग है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद एक साथ आते हैं, हमारे नव सांसद है उनको आज बुलाया है उद्धव जी ने, उनसे बातचीत होगी। जो सांसद यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे उनसे हम वीडियो विषय द्वारा उनसे हमारी बातचीत हम करेंगे। तो एक रेगुलर प्रोसेस है, उसमें नई बात कोई नहीं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीजेपी, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो
1: 2024 से ही सुन रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर होगा, कभी सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस होगा। अरे 9 सांसद हमारे चुन के आए हैं, आपके 240 चुन के आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं। टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर आपके पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है, अब क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हो? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं कि आप लोग डॉक्टर का काम कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग है हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब लोग आए, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो वो अपना कारण बताएगा कि क्यों नहीं आ पा रहा है। और संगठन की मीटिंग तो होते रहती है, कोई नई बात थोड़ी है, हर दल करता है, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।
2: सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं, हम पूरी तरह से बहुमत में है और ना हमें उनकी जरूरत है।
3: शिवसेना में वैसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, वो चुन के आए, वो कैसे आए, शिवसेना की वजह से चुन के आए। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें इंडिया आघाड़ी के लोगों ने बड़े पैमाने पे मदद की है, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से मदद पे रही है। ऐसे हालात में वो वहाँ जाएंगे, वो चलेगा कैसा? लोग उनको वहाँ घूमने देंगे क्या अपने मतदार संघ में? ऐसा उनको जिसको भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए।
4: मुळामध्ये आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही।
5: And a shocking case of alleged medical negligence has emerged from AIIMS Bhopal. A 3-year-old boy undergoing treatment for blood cancer. He died after a formalin was injected into his vein instead of the prescribed medication. The incident took place in December last year, but the police have now registered the FIR against 2 nursing officials following an internal hospital inquiry. Now the probe found that formalin, a highly toxic chemical used to preserve tissue samples, had been filled into a syringe which was meant for laboratory use. It was allegedly left near a patient's bed in violation of the protocol. Police have booked 2 nursing staff members for causing death by negligence.
6: एक जो एफ नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा के वो उठा लिया और मेरे मैडम से बोला, मैडम ये तो बोन मेरो का सामान है, इसमें एनेस्थिया भी है। तो मैडम बोले लगी, नहीं इसमें एनेस्थिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही, मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मेरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगे, नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही, सस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी, तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उस इंजेक्शन से, जो कि उस पर एफ नाम करके लिखा था। तो जैसे ही वो दवाई गई और बच्चा तुरंत उधर ही एक्सपायर हो गया।
7: ये वही एम्स है जहां पर सागर के बीना के रहने वाले एक पिता जिनके 3 साल के बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद उसे इलाज के लिए लेकर यहां पहुंचे। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यहां पर भर्ती किया गया और उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन अचानक बच्चे की एक इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे को फार्मेलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया। बच्चे के पिता ने नर्स को इंजेक्शन लगाने के दौरान कई बार कहा भी कि ये कुछ और लग रहा है, ये वो दवा नहीं है जो बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए दी जा रही है, लेकिन नर्स ने उनकी बात मानने की बजाय उस सिरिंज को बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर एम्स भोपाल सुर्खियों में है। कैमरामैन राजू बातम के साथ हरप्रीत कौर, रिन एनडी टीवी भोपाल।
8: Prime Minister Narendra Modi has left for Slovakia for his second leg of the visit. Prime Minister visit marks the first ever visit by an Indian Prime Minister to this country. Prime Minister was in France, Nice, for the first leg of his major European outreach vision. Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron jointly inaugurated Bharat Innovates 2026 conclave in Nice, bringing together startups, innovators, venture capital funds. And just ahead of the Bharat Innovate conclave, Prime Minister interacted with the top global investors, where more than 120 Indian deep tech startups, over 15 higher education research institutions were also present. Addressing the conclave, Prime Minister said that India-France ties go beyond conventional trade and strategic cooperation. He also added that India is not anymore only a consumer, but also a contributor to the world. Listen in.
9: Duniya mein alag-alag desh ek dusre ke saath vyapar karte hain. अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। हाँ, आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
10: Our two countries have the shared ambition of a reliable, open and safe AI that could be trusted, that could be responsible and that could be ethical. This is at the heart of the message that we sent in January 2023 by co-chairing the summit for AI.
9: Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space technologies, और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है।
10: Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. this long run says a lot about your determined action, or the strength of your country, and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here.
9: आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा भारत इनोवेट्स विद स्केल एंड स्पीड भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट्स फॉर द होल वर्ल्ड.
10: We practice Make in India, and for 10 years we've been developing industrial perspectives in the regard of defense and security and innovation and many more. And together we built a lot more than this. And this has led us to build that unique partnership between our two countries that has been strengthened a few months ago.
8: All the details of the two-nation tour of the Prime Minister and much more on our website, ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.